0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: हाय बेबी।
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रहे मतलब?
1: मींस आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट।
0: आई लव यू।
1: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।

0: फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।
1: Choice FM 90.4 MHz।

0: कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख
1: ऐसे ना तू देख परे दिल क्यों मेरा ब्रेक करे लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का

0: जो तू सैंडल में करना पाऊ हैंडल में सांस सा देखो मेरा रुकने लगा
1: देखा जो हसीना के सीने पे पसीना तो पसीना तेरा भी देखो छटने लगा।